0: This is Global Digital Radio.
1: Parli italiano?
2: Milaš elenika?
3: Ali govoriš slovensko?
0: Your life, your stories. Radio Global.
4: Suno, aur gaur se suno. Are pehle taaliyan to bajao. आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।